संसार दे अंदर गुरु तेग बहादुर जी तुहाडे तो इलावा साडी कोई बांह पकड़न वाला नहीं। साध संगत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कृपा दे खजाने मेरा दिशाएं उन्हां दे चरणां विच जिहड़ी इन्हां अर्ज कीती सी ते गुरु बिलास विच बचन अंकत ने के दुखी विपर चल आए सो पुरी आनंद ते क्या सी बाहें असाडी पकड़िए श्री हर गोबिंद के नंद ते जेड़ा आ सजना गुरमुखा ने एक बचन पढ़े इनू विद्वान कहिंदे ने एक भट चांद दा लिखे है साहब ने जदो उन्हां दे मुख राही बचन कहाए ने पर है कवि दी रचना के चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचै बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए बाएं जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै बाएं ना छोड़िए ते साहब ने एक गल कही सी सजनो असी तां बाह घुट के फड़ा फड़ांगे पर एक गल दा ख्याल उसी भी रखिया जे कि तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए जमीन ते तां टुकड़े टुकड़े होके डिग पैना पर कदी भी धर्म तो मुंह ना मोड़ना। आओ प्यारियो उस गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी शहादत दा कारण सानू सब नू मालूम है समाचार तो इस तो जानू हां असी शहादत दा कारण इको सी तिलक ते जन्यू केवल धर्म दी खातर सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर तो चलदे ने। आओ केड़े ढंग नाल शहादत होई साहिब नू शहीद करन तो पहला किवें उन्हां दे प्यारे गुरसिखां नू उन्हां दे नेत्रां सामने शहीद कर दिता उन्हां गुरसिखां तो बाद गुरु तेग बहादुर जी नू शहीद कीता किवें गुरु तेग बहादुर जी दा शीश गुरु का सिख भाई जैता आनंदपुर दी धरती ते लैके आया ते किवें जिस थां ते गुरु तेग बहादुर शहीद कीते गए एक गुरु अस्थान किवें होंद विच आए उस गुरु तेग बहादुर जी दे इस समुचे जीवन दी विचार गुरु कृपा नाल आपां ने करनी अज नरोल इतिहासक विचार केवल अपने बजुर्गां दे अपने सत्कार योग सतगुरु दे पवित्र जीवन नूं आपां विचार सकीए ते इन्ना कु पता लग जाए असी किन्ने कु अमीर विरसे दे वारस हां किन्नी कु गुरु तेग बहादुर जी ने असाडे ते कृपा कीती। करो कृपा गुरमुख प्यारियो आशीष बख्शो गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दा ध्यान टिकाओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी आप ही सहाई हो आप ही अपने पवित्र इतिहास दी विचार करा लवो। करो कृपालता गुरमुख प्यारियो बड़े प्यार अदब दे नाल कोई भी रचना मेरे हजूर दे नाम तो वांझी ना रहे अपनी सुरती बिरती नूं उस धरती ते लै जो जेड़ी इत्थों सैकड़े कोहां दूर है जिथे गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत होई सुरती टिकाईए उस अस्थान ते जिस अस्थान ते गुरु तेग बहादुर जी नूं कीता गया शहीद। करो कृपा प्यारियो बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुख प्यारियो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदो आनंदपुर साहिब दी धरती तो चलन लगे ने ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे नाल पंज सिख तुरे ने इन्हां विचों दो तां सके भरा ने एक दा नाम है भाई मती दास ते दूसरे दा नाम है भाई सती दास ते ए दोनों जेड़े ने भाई पिरागा जी दे खानदान विचों ने ते भाई पिरागा जी ओ गुरु के सिख होए ने जिन्हां ने गुरु अर्जन साहिब जी दे वेले सिखी नूं कमाया ते जिन्हां ने शब्द दे रस नूं माणे ते भाई पिरागा जी दे जीवन संबंधी भाई गुरदास ने अपनी बाणी विच खास करके जिक्र कीता है। भाई पिरागा दी अंश विचों भाई मती दास ते भाई सती दास ने भाई मती दास गुरु का दीवान है ते भाई सती दास जेड़े ने गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां विच रहिंदे ने।

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिवें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी। गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है ओ इतिहास दीआं पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लै के सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरतिये दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया। वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरु बिलास पातशाह छेवीं। सारा गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन। किसे ने पातशाह दसवें दा जीवन लिखिया गुरु बिलास पातशाह दसवीं। ये दो ग्रंथ ने एक भाई सुखा सिंह दा लिखिया एक भाई कोयर सिंह दा लिखिया। इस तो इलावा महिमा प्रकाश लिखिया गया एक वार्तक रूप अंदर एक काव्य रूप अंदर। एदे नाल ही मैं एक अर्ज करा जिस विद्वान कवि दा इतिहास तुसी सरवण करदे हो सिख धर्म दे अंदर पहला विद्वान है भाई संतोख सिंह जिन्हें गुरु नानक साहब तो लैके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तक दा जीवन अपनी कलम न लिखे। मैं अर्ज करदे हां इस करके कथा तो पहला भाई साहब भाई संतोख सिंह जी जेड़े बिल्कुल एक गरीब जै परिवार विच पैदा होए ने। इन्हां दे पिता दा नाम सी भाई देवा सिंह जी अंबाले दे नेड़े बुढ़िए पिंड विच रहण वाले सन। इन्हां दे पिता जी नूं चाह सी गुरबाणी दे अध्ययन दा पठन पाठन करन दा। पिता जी इन्हां दे अमृतसर आए

भवति। परं सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैयां विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदा एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिज़क देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिज़क देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पहरन नू बस्त्र देंदा है, खान नू भोजन देंदा है, तन ते पान वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते ए खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदो इनू पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इको उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ए केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा लै सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दित्ता खानी हां, उहदे दित्ते हुए वस्त्र पानी हां, उस निरंकार दे दित्ते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईआं ते चारां ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रहीआं बापू तेरा दित्ता खानियां वां, पर उह कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक हो के कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जड़ा पत्थर दे कीड़ियां नूं रिज़क देंदा है, जड़ा पानी विच पैदा होए जीवां नूं रिज़क देंदा है, जड़ा धरती ते पैदा होई बनस्पति नूं रिज़क देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पै ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कहन लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागा जे होवे तू अपने भागा इतने नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपने विचार की सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नूं आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नूं गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नूं पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नूं बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

साबिद तुम हर जानो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे कम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले

मैं पीता ना जाता हराम खोर हूँ क्या मुख देशा हूँ क्या मुँह देशा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार तान रूप रहा करता सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहन दिया रस अन्न भोगानी अन्न खाना कपड़ पहन दिया रस अन्न भोगानी जिन दिए सोचित ना आवही पशु हों कर जानी ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परमवत नानक दिन की शरणा जिन तो नाही विषया परमवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विषया परम सम्मान योग सैल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी है पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों अज हफ्तावारी जो विशेष दीवान सज रहे ने इस दी हाजरी आप जी ने पढ़ी है अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारे असानू सरवण करा रहे सन और कीर्तन दा प्रकरण केवल एक सी मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना तू जल सल मैयल पार को लेना इस ही केवल विषय ऊपर गुरमुखा ने कीर्तन किया आओ इसे नु ही आधार बना के आप जी नाल कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पानी है अपने थुरलियां नु अपने अंदर नु टिकाण दा यतन करिए गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप जी ने टिक के जदों कीर्तन सरवण कीता ते पाईशन हुई हजूर दा ओ वचन आप नु सांझा कर रहे सन हे मेरे करते पुरख वाहेगुरु जी पहली गल अज टीकरा तेरा किसी ने अंत नहीं पाया दूसरा वचन पानी विच झाती मारना वा जल विच भी तू है थल विच भी तू है पुलाड़ विच भी तेरा अपना ही स्वरूप है ते हर एक दे अंदर तेरी अपनी जोत टिकी है इस गल नूं आपां सारे चंगी तरह समझने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने
परमात्मा नूं किसे एक थां ते निश्चित नहीं केवल कीता कि इस थां ते परमात्मा रहिंदा है, इस तों बाहर परमात्मा नहीं। ना किसे चार दीवारी नूं, ना किसे मरी नूं, ना किसे कबर नूं, ना धरती दे एक टुकड़े नूं इह नहीं कहा कि परमात्मा केवल इत्थे रह रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने उस एक दी सर्व व्यापकता दा जिक्र कीता है। ओ एक है पर एक होण दे बावजूद भी ओ सर्व व्यापक है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना ने उस सर्व व्यापक नूं बयान कर दिया है। ओदी जोत दा टिकाणा हर एक दे विच मनिया है। आपां ने सरवण भी कीता ते रोज असीं इह बाबे नानक दे बचन पढ़ने हां कि सब में जोत जोत है सोए, कि सारे विच ओदी अपनी जोत है, तिस दा चानन सब में चानन होए, ते उस जोत दा चानन सारिआं दे विच है। मैं सिर्फ इस विषय से अर्ज करनी चाहना जे ओ सर्व व्यापक है, ओदी सारिआं विच जोत मौजूद है, की कारण कि एक बंदा निंदक बन गया, दूजा बंदा रब दी सिफत पिया करदा है। निंदिया वाले विच भी ओदी जोत है। एक बंदा संत बन गया, दूजा बंदा साखत बन गया। एक बंदा ज्ञानवान बन गया, दूसरा इंसान मूर्ख हो गया। एक बंदा टुटिया होया नूं जोड़न लग पिया, एक बंदा जुड़िया होया नूं शब्द बोल बोल के तोड़न लग पिया। जे सारिआं विच परमात्मा दी जोत है, सारिआं विच ओह परिपूर्ण परमेश्वर है, ते एक चंगा क्यों ते दूसरा मंदा क्यों? हजूर ने बाणी विच फरमाया कि सब में जोत जोत है सोए।

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी

0: दोहराए अब चल नगर सतगुर गए।
1: हजूर साहब क्या गए
0: उड़कन को कारनाश
1: औरंगजेब आदि ने जफरनामे के नाल नाश करके
0: अंधार तह ठा रहे
1: सतगुरु जी इथे रहे हैं
0: अजर के जाहे बिलास
1: बड़े कहने।

का जाप करिए। सर्वेश्वर श्री गुरु गोविंद सिंह काल जो जाग रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।

अगे संतां नूं प्रचार कीता, उदों अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।